0: लोगो कई लागरी गेल्ले ती माती मातले बी क्रिस्त उबो वगू आनी हे सिफिरी सांदू लिदा आहे तिल्या रिये गुती लोगो ये नीला लोग मिया बिला क्रिस्त उबो वगू कई सिगरी गया।
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sifri le